0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेथ का कहना है कि अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों की गैर मुअय्यना मुद्दत तक नाकाबंदी बरकरार रख सकती है। उनका ये तबसरा एक ऐसे वक्त में आया है जब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की शर्त के तौर पर नाकाबंदी हटाने का मुतालबा किया है। जुमेरात को नामा निगारों से बात करते हुए हेगसेथ ने कहा कि अमरीका बहरी जहाज़ों को बारी बारी तैनात करेगा और नाकाबंदी जारी रखेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी हुक्काम का हवाला देते हुए बताया है कि उनका मुल्क USS अब्राहम लिंकन की जगह जौहरी ताकत से चलने वाले तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS जॉर्ज वाशिंगटन को मशरक़ वुस्ता भेजने की तैयारी कर रहा है। इस अखबार ने कहा है कि टोक्यो के करीब योकोसुका में तैनात जॉर्ज वाशिंगटन इस हफ्ते आबनाए मलाका से गुजरा। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के मंजरनामे पर गैर यकीनी सूरत हाल में जहाज रानी पर असरात बढ़ रहे हैं। जापान ने यूक्रेन को बारूदी सुरंगों का पता लगाने का एक नया निज़ाम फराहम किया है जो सेंसर से लैस ड्रोन और मस्नूई जहानत से तज्जिया करने की सलाहियत का हामिल है। यूक्रेन को उन इलाकों में ज़मीन में दबी बारूदी सुरंगों को हटाने के बड़े चैलेंज का सामना है जिन पर रूस ने हमला किया था। जापान बैनुल अक्वामी तआवुन एजेंसी जायका के यूक्रेन में कायम दफ्तर ने जुमेरात को दारुल हुकूमत कीफ में एक तकरीब के दौरान यह निज़ाम यूक्रेन की हुकूमत के हवाले किया। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के अव्वल नायब सरबराह ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि उनका मुल्क लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए जापानी इमदाद का भरपूर इस्तेमाल करेगा। इस निज़ाम में एक ड्रोन शामिल है जो तकरीबन 3 मीटर की बुलंदी पर परवाज करते हुए ज़मीनी सतह और ज़ेर ज़मीन हालात का मिकनतीसी सेंसर और ऑप्टिकल कैमरे से सर्वे करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जमा की गई मालूमात का नक्शा बनाने के लिए AI तजिया किया जाता है जिसमें इंतहाई दुरुस्तगी से उन जगहों की निशानदही की जाती है जहां बारूदी सुरंगें और दीगर अनफटे हथियार मौजूद हैं। रिवायती तौर पर बारूदी सुरंगें साफ करने वाला अमला रिहायशियों के साथ इंटरव्यूज़ और दीगर तरीकों से बारूदी सुरंगों की शनाख्त करने की कोशिश करता आया है। जापान की खलाई एजेंसी जाक्सा ने मरीख के एक चांद के लिए एक तहकीकी खलाई जहाज को मीडिया के सामने पेश किया है। ये मिशन जल्द अज जल्द मौसम खिजां में शुरू किया जाना है। इसका मकसद चांद फोबोस की सतह के पहले नमूनों को ज़मीन पर वापस लाना है। मीडिया के अरकान को मरीख के चांदों के तहकीकी खलाई जहाज या MMX दिखाने के लिए जुमेरात के रोज़ तानेगाशीमा खलाई मरकज़ में मदऊ किया गया था। जाक्सा ने इस जहाज को तैयार करने पर तकरीबन $347 मिलियन खर्च किए हैं जिसके बारे में उसे उम्मीद है कि ये मरीख के चांद पर उतरने और सतह के नमूने वापस लाने की दुनिया की पहली कामयाब कोशिश होगी। इस तहकीकी जहाज के 3 मॉड्यूल हैं जिनकी मजमूई लंबाई 5.3 मीटर और वजन 4.4 टन से ज़्यादा है। इन मॉड्यूल में से एक जिसमें इंजन और फ्यूल टैंक है मरीख के चांद के सफ़र में इस्तेमाल किया जाना है। मीडिया को दिखाए जाते वक्त इस हिस्से को दीगर 2 से अलग रखा गया था। दूसरा मॉड्यूल तहकीक के लिए है। फोबोस पर उतरने के लिए इसकी 4 टांगें हैं और इसमें एक आला लगा हुआ है जो सतह के नमूने जमा करने और मुशाहदे के आलात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा मॉड्यूल वापसी के सफ़र के लिए है। इसमें जमाशुदा नमूनों को रखने के लिए एक कैप्सूल है। ये मॉड्यूल जाक्सा और NHK के मुश्तरका तैयार करदा सुपर हाई डेफिनेशन कैमरों से भी लैस है।
1: आखिर में खास खबरों का खुलासा। जापान के चीबा प्रीफेक्चर में जुमे के चंद इब्तदाई घंटों तक रिकॉर्ड मिकदार में बारिश हुई है। जापानी हुकूमत रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के उन 4 जज़ायर में से एक के दौरे के खिलाफ जवाबी इकदाम करने पर गौर करने का इरादा रखती है जिन पर रूस का कंट्रोल और जापान का मलकियती दावा है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।

0: いただきます。ごちそうさまでした。
1: サミン、अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए.
2: いただきます。ごちそうさまでした。
1: जापानियों के साथ खाना खाते वक्त अगर आप ये इस्तेलाहात इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके साथ उनसियत महसूस करेंगे।
3: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम ने कोई चीज ना खा सकने की बात की है।
4: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。
5: これ生卵ですか？
4: はい。
5: すみません。私生卵は食べられません。
6: そう、じゃあ納豆もダメ？
5: 納豆大好きです
7: クイシンボーカイトにお任せ。
1: アラブカノケショキンカイトケマシフロンカカーナル。アジカモズジャパニーナシタヘ。
3: ヒラ、ジャパニーナシタセアプケゼンメケサナシタアタヘ。
1: उबले हुए चावल, मिसो सूप और भुनी हुई मछली वगैरह, यानी बिल्कुल इस सबक के मकालमे वाला मंजर।
3: आपने रिवायती जापानी नाश्ते की बिल्कुल दुरुस्त मंजरकशी की है। बाज लोग खमीर लगे हुए सोयाबीन से तैयार करदा नत्तो, खुश्क खुर्दनी समुद्री नबातात, आलूचे का अचार या अंडे भी खाते हैं। आज के मकालमे में कच्चे अंडे का जिक्र था, लेकिन जापानी अंदाज का आमलेट भी आम है।
1: वैसे आजकल जापानी लोग मगरबी अंदाज का नाश्ता भी तो करते होंगे।
3: जी बिल्कुल, आजकल डबल रोटी, तले हुए अंडे, फलों के जूस और चाय या कॉफी वाला नाश्ता भी काफी आम है।
1: तो यहाँ के होटलों में किस किस्म का नाश्ता मिलता है?
3: जापानी अंदाज की सराय में तो आमतौर पर रिवायती जापानी नाश्ता होता है, लेकिन होटलों में ग्राहक आमतौर पर जापानी या मगरबी अंदाज के नाश्ते में से इंतखाब कर सकते हैं। कई होटलों में बुफे सर्विस भी होती है जिसमें मुकर्रर पैसों में जो मर्जी और जितना मर्जी चाहे खा सकते हैं।
1: फिर तो मेरे लिए बुफे सर्विस बेहतर है। इसमें जापानी और मगरबी दोनों अंदाज की चीजें खाई जा सकती हैं।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 14 अगस्त शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। जापान के चिबा प्रीफेक्चर में शुक्रवार सुबह तक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। अब तक 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। मौसम अधिकारी और अधिक वर्षा की आशंका व्यक्त करते हुए एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह एनएचके के एक हेलीकॉप्टर से ओआमी शिरासातो शहर की ली गई तस्वीरों में एक व्यापक क्षेत्र में पार्किंग, सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी भरा देखा जा सकता है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने चिबा प्रीफेक्चर के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा और भूस्खलन के संबंध में स्तर 5 की आपात चेतावनी जारी की थी। एजेंसी के 1 से 5 के पैमाने पर ये उच्चतम स्तर है, लेकिन अब एजेंसी ने इसे स्तर 4 या उससे कम कर दिया है। मौसम अधिकारी लोगों से भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में उफान के खतरे को लेकर सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं। ये चेतावनी केवल चिबा के लिए नहीं बल्कि टोक्यो सहित पूरे कांतो क्षेत्र के लिए है। स्थानीय पुलिस के अनुसार कुल 8 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों के अनुसार इनमें से कुछ लोग पानी से भरी सड़कों के किनारे पाए गए, जबकि अन्य वाहनों के अंदर फंसे हुए थे। चिबा प्रीफेक्चर में भारी वर्षा के कारण बृहस्पतिवार को रेल व बस सेवाएं ठप होने के चलते लगभग 7,000 लोगों को प्रीफेक्चर स्थित नारिता हवाई अड्डे पर रात गुजारनी पड़ी। कुछ यात्रियों को हवाई अड्डा टर्मिनल के प्रतिबंधित क्षेत्रों में रात को रुकने की अनुमति दी गई। टोक्यो के निकट स्थित नारिता हवाई अड्डे की संचालक कंपनी ने लोगों को भोजन, पानी और स्लीपिंग बैग उपलब्ध कराए। शुक्रवार सुबह रेल व बस सेवाएं बहाल होने पर लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। सैन फ्रांसिस्को से आई एक पर्यटक ने कहा कि लंबी उड़ान के बाद उसे रात हवाई अड्डे पर बितानी पड़ी, जिससे वो बहुत थक गई है। उसने कहा कि बहुत सारे लोग टोक्यो जा रहे हैं और ऐसे में उसे चिंता है कि वो ट्रेन में चढ़ भी पाएगी या नहीं। जापान सरकार इतोरोफू द्वीप पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के जवाब में कदम उठाने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि इतोरोफू द्वीप उन रूस नियंत्रित 4 द्वीपों में से एक है जिन पर जापान अपना दावा करता है। एक कदम उन मौजूदा प्रतिबंधों को कड़ा करना हो सकता है जो यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के मद्देनज़र जापान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर रूस पर लगाए हुए हैं। जापान में इन द्वीपों को उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है। जापान सरकार अपने रुख पर कायम है कि ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न अंग हैं। सरकार का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई ने बृहस्पतिवार को पुतिन की इतोरोफू यात्रा के संबंध में बल देते हुए कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ये द्वीप जापान का अभिन्न अंग है। ताकाइची ने कहा कि रूस के मौजूदा राष्ट्रपति की ये यात्रा द्वीपों पर जापान सरकार के लगातार रुख से मेल नहीं खाती।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमरीकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ का कहना है कि देश की नौसेना अनिश्चित काल तक ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर सकती है। उनका बयान ऐसे समय आया है जब ईरान ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने की शर्त के रूप में नाकाबंदी हटाने की मांग की है। बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बात करते हुए हेक्सेथ ने कहा कि अमरीका जहाजों को बारी बारी से अंदर बाहर भेजता रहेगा और नाकाबंदी जारी रखेगा। समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि उनका देश यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेने के लिए परमाणु ऊर्जा चालित विमान वाहक पोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को पश्चिम एशिया भेजने की तैयारी कर रहा है। समाचार पत्र ने बताया कि टोक्यो के पास योकोस्का में तैनात जॉर्ज वॉशिंगटन इस सप्ताह मलक्का जल डमरू मध्य से गुजर चुका है। अमरीका और ईरान के बीच बातचीत के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के चलते जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। जापान ने यूक्रेन को बारूदी सुरंगों का पता लगाने की एक नई प्रणाली दी है जिसमें सेंसर से लैस ड्रोन और एआई विश्लेषण की सुविधा है। यूक्रेन को रूसी घुसपैठ वाले इलाकों में बिछी बारूदी सुरंगों को हटाने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी जाइका के यूक्रेन कार्यालय ने बृहस्पतिवार को राजधानी कीव में एक समारोह में ये प्रणाली यूक्रेन सरकार को सौंपी। यूक्रेन की राष्ट्रीय आपात सेवा के प्रथम उप प्रमुख ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यूक्रेन देशवासियों की जान बचाने के लिए जापानी सहायता का भरपूर उपयोग करेगा। इस प्रणाली के तहत एक ड्रोन करीब 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए अपने चुंबकीय सेंसर और ऑप्टिकल कैमरा से भूसतह और भूमिगत स्थिति का सर्वेक्षण करता है, जिसके बाद एकत्रित जानकारी का एआई विश्लेषण किया जाता है ताकि उच्च सटीकता के साथ ये पता लगाया जा सके कि बारूदी सुरंगें और बिना फटे बम कहां कहां मौजूद हैं। अब तक निवासियों से बातचीत करके या अन्य तरीकों से ही पता लगाने की कोशिश की जाती थी कि बारूदी सुरंगें कहां कहां बिछी हो सकती हैं। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने मीडिया को मंगल ग्रह के चांद पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान की झलक दिखाई है जिसे जल्द से जल्द इस साल शरद में भेजा जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य पहली बार फोबोस चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटना है। तानेगाशीमा अंतरिक्ष केंद्र में बृहस्पतिवार को मीडिया को मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन यान यानी MMX देखने के लिए आमंत्रित किया गया। जाक्सा ने इस यान के विकास में लगभग 34.7 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं। जाक्सा को उम्मीद है कि मंगल ग्रह के चंद्रमा पर उतरकर सतह के नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर लौटने का विश्व में पहला सफल प्रयास किया जा सकेगा। इस खोजी यान में 3 मॉड्यूल हैं, तीनों की कुल मिलाकर ऊंचाई 5.3 मीटर है और वजन 4.4 टन से अधिक है। इंजन और ईंधन टैंक वाले मॉड्यूल का उपयोग मंगल ग्रह के चांद की यात्रा में किया जाएगा। मीडिया को दिखाते समय इस मॉड्यूल को अन्य 2 मॉड्यूल से अलग रखा गया। दूसरा मॉड्यूल अन्वेषण के लिए है। इसमें फोबोस चांद पर उतरने के लिए 4 पैर हैं और इसमें एक उपकरण लगा है जिसका उपयोग चांद की सतह के नमूने और अवलोकन उपकरण एकत्र करने के लिए किया जाएगा। तीसरा मॉड्यूल वापसी यात्रा के लिए है जिसमें एकत्रित नमूनों को रखने के लिए एक कैप्सूल है। इसमें जाक्सा और एनएचके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपर हाई डेफिनेशन कैमरे भी लगे हैं। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।